बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। Legends don't ask for attention, they own it. Like we own the attention at Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, all yon tikha. Welcome, guys.

एंट्री बाय स्पेन इन द फिनाले। लमीन यमाल ने पेनल्टी जीती, माइकल ने फिनिश किया और पेद्रो पोरो ने गेम सील कर दिया। सही बोला था मैंने, टुडे स्पेन विल बी टुमारो स्पेन फॉर फ्रांस।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं? आपको
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर, सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: दिलाया था 2200 रूपए का।
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं, आप बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
3: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट? जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर दिगाज. सिर्फ एक रात की इंतजार. इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लामिन यमाल. एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो. फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर दिगाज. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट? जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही। ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ। इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे। लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल योंतिका।

एम्बापे और फ्रांस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, वेटिंग फॉर द नाइट।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे मिर्ची ऑयो।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूट आउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस टुमारो मिडनाइट।

वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयोंदिका एंड डीजे रिचर्ड ओवर योर

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: Club Mirchi.

Once again, Club Mirchi जा रही है DJ Richard and Mirchi और योंथे का आपके साथ। इस बार स्टेडियम में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला गया, कल्चर्स मिले, चांस मिले, टीयर्स मिली, हग्स मिली। इसीलिए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन तो क्लब मिर्ची पे बनता है। इसीलिए दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची विद ऑयोंदिका एंड डीजे रिचर्ड।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूटआउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस टुमारो।

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Breaking news, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना। हिट.

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही, ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ, इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे, लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेट्स गो।

के शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलेन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

मेसी चाहे हेडलाइंस में हो या ना हो, कैमरा उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुछ प्लेयर्स मैच खेलते हैं, कुछ पूरी जेनरेशन को फुटबॉल से प्यार करना सिखा देता है। एंड वी नो मेसी इज द वन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयोंतिका एंड टी

इस बार सिर्फ स्टार्स नहीं चमके, ब्रेकआउट प्लेयर्स ने भी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। हर वर्ल्ड कप एक नया पोस्टर बॉय देता है और 2026 भी एक्सेप्शन नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेट मी नो योर पोस्टर बॉय ऑफ दिस वर्ल्ड कप। फाइंड मी ऑन सोशल्स, आई गो बाय ओयोंतिका, AYANTIKA

स्टेडियम के चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स, इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका, एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

0: अरे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है राइट
1: जी।
0: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में।
2: मैं बोल कौन रहे हैं?
0: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा
0: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
0: सही बात,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
0: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: मोर ऑप्शंस लाइक चेंज पासवर्ड, रीसेट इट, मैनेज मल्टी यूजर फॉर्मेट इट एंड सम मोर। इफ वी असाइन एनी कंप्यूटर एज ट्रस्टेड वन, वी डोंट नीड टू गिव पासवर्ड एवरी टाइम।
3: पता नहीं औरतों के दिमाग में भेजे में बात नहीं आती यार, शादी करके मैं तो पछता रहा
1: हूँ। लेट्स गिव द पासवर्ड एंड इट्स
0: डन। वो मेरी वाइफ है यही।
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
0: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: साहब मेरे से तो
0: नहीं,
2: बातें सही से कर रहे हैं।
1: हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
4: मंडे को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम होगी लेकिन फुटबॉल डिस्कशन ऑल टाइम हाई। फाइनल के बाद और फैन के पास एक स्टोरी एज एन एफिलिएट मार्केटर विदाउट द लाइन ऑन गूगल फेसबुक और क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स ऑन पिंटरेस्ट ट्विटर टिकटॉक और इंस्टाग्राम। दिस मे साउंड लाइक अ बिग क्लेम बट आई एम हियर टू शो यू हाउ दिस इज पॉसिबल इन 50 सेकंड्स। हाय आई एम एडम चेरिंगटन, आई हैव बीन एन अफिलिएट मार्केटर फॉर ओवर 20 इयर्स एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ चेरिंगटन मीडिया, एन 8-figure अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। And I want to share my life-changing discovery with you. The Invisible Affiliate System is a completely different approach that took me from a struggling broke wannabe to a super affiliate earning $250,000 per month. And the best part? You don't even need a website of your own or have to rely on any of these major traffic sites or worry about market saturation or finding a profitable niche. Instead, I'll guide you to the invisible networks that few affiliates know about. This system is backed by real-world experience and rules that give you a mathematical advantage. Forget the traditional affiliate strategies that lead to fierce competition on oversaturated platforms. No more algorithms or ad bans. Just a proven step-by-step process to reach your profit goals. I'll provide you with the exact niche market, products, target demographic, and secret traffic source you need. You don't need to be a computer whiz either. This breakdown is as easy as making your morning cup of coffee. If you'd like to get instant access to this free presentation, simply tap the button on this ad and enter your email address on the next page and get access to everything you need to scale your business. I'll see you there.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। Hello and welcome to Club Mirchi World Cup Final Weekend. And this is your host Mirchi Oyontika. With me is DJ Richard and World Cup Final Weekend Special. One more night to

क्लब मिर्ची जा रही है वह जीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन दिगा सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लमीन यमाल, एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन दिगा, दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। लेजेंड्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन, दे ओन इट, लाइक वी ओन द अटेंशन एट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन तिखा। वेलकम गाइस।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका। लेट्स गो।

एमबापे और फ्रांस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका वेटिंग फॉर द नाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड मिर्ची।

VAR फुटबॉल का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms, Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट। जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही। ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ। इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे। लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक पीपल। वी आर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूटआउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर।

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट। जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाय।

एनर्जी और योर्टिका सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लमीन यमाल, एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची।

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

पेनल्टी शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलेन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

मेसी चाहे हेडलाइंस में हो या ना हो, कैमरा उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुछ प्लेयर्स मैच खेलते हैं, कुछ पूरी जेनरेशन को फुटबॉल से प्यार करना सिखा देता है। एंड वी नो मेसी इज द वन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

स्टेडियम के चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स, इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

कल रात दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल फेस्टिवल अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाएगा। टीम कोई भी जीते, जीत फुटबॉल की ही होगी। मैं हूं मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड और क्लब मिर्ची। बस इतना ही। एंजॉय द फाइनल, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट और याद रखिए, ग्रेट मैचेस खत्म होते हैं, ग्रेट मेमोरीज कभी नहीं। टाटा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैसन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूज बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। Hello and welcome to Club Mirchi World Cup Final Weekend. And this is your host Mirchi Oyontika. With me is DJ Richard and World Cup Final Weekend Special finally begins.

एक बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। Legends don't ask for attention, they own it. Like we own the attention at Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyon Tikka. Welcome.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में भेजे में बात नहीं आती यार, शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं,
2: हाँ, आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। हाँ? नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं।
3: नहीं, नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली कर रहे हैं?
3: नहीं, मैं, मेरी वाइफ है यार।
2: नहीं,
3: बात नहीं, तमीज सीख ले।
2: नहीं, तमीज, नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए,
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

सिर्फ रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लमीन यमाल, एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

मंडे को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन फुटबॉल डिस्कशंस ऑल टाइम हाई। फाइनल के बाद हर फैन के पास एक स्टोरी जरूर होगी। चीयर्स टू ऑल ऑफ दैट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका। फॉलो रिचर्ड, ही गोज बाय डीजे रिचर्ड ऑफिशियल।

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योंतिका।

फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 clean sheets in 7 matches, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका वेटिंग फॉर द नाइट।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूट आउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस टुमारो मिडनाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन.

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। वेल चीयर्स टू ऑल द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: इन हैंड।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे के कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहा है?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष, कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go on a ride.

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंते का आपके साथ। इस बार स्टेडियम में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला गया, कल्चर्स मिले, चांस मिले, टीयर्स मिली, हग्स मिली। इसीलिए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन तो क्लब मिर्ची पे बनता है। इसीलिए दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही, ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ, इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे, लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स

पेनल्टी शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

पेनल्टी शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलेन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

मेसी चाहे हेडलाइंस में हो या ना हो, कैमरा उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुछ प्लेयर्स मैच खेलते हैं, कुछ पूरी जेनरेशन को फुटबॉल से प्यार करना सिखा देता है। एंड वी नो मेसी इज द वन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

स्टेडियम के चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स, इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

कल रात दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल फेस्टिवल अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाएगा। टीम कोई भी जीते, जीत फुटबॉल की ही होगी। मैं हूं मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड और क्लब मिर्ची। बस इतना ही। एंजॉय द फाइनल, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट और याद रखिए, ग्रेट मैचेस खत्म होते हैं, ग्रेट मेमोरीज कभी नहीं। टाटा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

इस बार सिर्फ स्टार्स नहीं चमके, ब्रेकआउट प्लेयर्स ने भी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। हर वर्ल्ड कप एक नया पोस्टर बॉय देता है और 2026 भी एक्सेप्शन नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेट मी नो योर पोस्टर बॉय ऑफ दिस वर्ल्ड कप। फाइंड मी ऑन सोशल्स, आई गो बाय ओयोंतिका, AYAN

चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स, इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

फाइनल सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, लेगेसी के लिए भी होगा। कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ लोग हिस्ट्री लिखेंगे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंदिगा। द वेट इज फाइन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. La vez bala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट रहे हो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

मंडे को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन फुटबॉल डिस्कशंस ऑल टाइम हाई। फाइनल के बाद हर फैन के पास एक स्टोरी जरूर होगी। चीयर्स टू ऑल ऑफ दैट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। फॉलो रिचर्ड, ही गोज बाय डीजे रिचर्ड ऑफिशियल।

90 minutes या शायद 120, शायद पेनल्टीज, लेकिन गारंटी सिर्फ एक है, संडे मिडनाइट के बाद एक नया चैंपियन होगा और हम सब उस मोमेंट के गवाह होंगे। और इस एक्साइटमेंट का परफेक्ट साउंडट्रैक क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड राइट हियर राइट नाउ।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूज बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड एंड दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड एंड वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल वन मोर।

क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गा. सिर्फ एक रात की इंतजार. इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लमीन यमाल. एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो. फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गा. दिस इज द साउंड.

एक बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। लेजेंड्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन, दे ओन इट, लाइक वी ओन द अटेंशन एट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन तिखा। वेलकम गाइस।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो इंतकाल। लेट्स गो।

एम्बापे और फ्रांसिस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका वेटिंग फॉर द नाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड मिर्ची।

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

0: Mirchi. Busca bala, busca bala, saca bala. Gran bala. Burga, burga. La vida es bala, burga.
1: Mirchi, burga. हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग,
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको. अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं
1: रहे हैं.
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है.
2: असली नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: नहीं,
2: बात नहीं, तमीज सीखिए.
1: नहीं, मेरी बात सुनिए.
2: देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने का सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: इन हैंड।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज़ नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

भारत वर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरण

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello.
3: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको?
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23
3: एक सेकंड सर। सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi.
1: Iskabara, uskabara, sakabara. Rabbala. Burka, burka. La virpa, la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहा है?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
2: आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर रहे
3: नकली तरीके से. क्या
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है?
3: असली नहीं, नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई
3: बपौती है? तमीज से
2: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Oh my.
3: Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1,
2: so the week of love is done and that means हम अपनी नॉर्मल सी जिंदगी में वापस जा सकते हैं। जो सिंगल थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो वैलेंटाइन डे के बाद सिंगल हो गए हैं, आई फील फॉर यू होमी। एनीवे मेरी सिंपथी बस उतनी ही थी। एंड नाउ लेट मी जस्ट से वेलकम टू द मिर्ची टॉक 20 विद योर बॉय सुरेन। एंड आज मैन वाओ, वी हैव चार का डोज, चार चार नए गाने दैट विल मेक द डेब्यू एंड दैट इंक्लूड्स सलमान भाई का ब्रांड न्यू गाना द न्यूएस्ट ट्रैक फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार, अ पंजाबी सॉन्ग एंड ऑल्सो एक ऐसा रिक्रिएशन जिसे बैरली 11-12 साल हुए हैं। But first up, let me tell you countdown के पहले दो गाने कौन से हैं। Number 20 पे I've got Banjare from Almost Pyar with DJ Mohabbat.
0: Number 20.

0: अन्विता दत्त की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म कला से दैट वाज शॉक संग बाय मिस्टर माएस्ट्रो स्वानंद किरकिरे
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: स्वानंद साहब अब कैसे इनका जिक्र करूं मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड लुक इस इंडस्ट्री में कुछ आर्टिस्ट हैं जो आर्ट पे फोकस करते हैं एंड कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो रोजी रोटी ढूंढते हैं स्वानंद किरकिरे clearly emphasizes more on the art part than the money part. National School of Drama के graduate जिन्होंने दो national awards जीते हैं for बंदे में था दम वंदे मातरम वाला गाना इन लगे रहो मुन्ना भाई and also बहती हवासा था वो in Three Idiots. गाने के साथ रिश्ता at least हिंदी फिल्मों में शुरू हुआ था with the 2003 film हजारों ख्वाहिशें ऐसी लेकिन for a man जिन्हें कोई formal तालीम नहीं मिली है in singing अपनी अलग टेक्सचर वाली आवाज के लिए इन्हें बहुत फैंस मिले अब वो बावरा मन हो खोया खोया चांद हो आरा बर्फी हो और इवन दैट सॉन्ग इन मसान जिसका नाम है तू किसी रेल सी और आज जब मौका मिल ही रहा है और अभी हमने शौक सुना है तो मेरे मिर्ची टॉप 20 रिवाइंड में आई वॉन्ट टू प्ले अ वेरी स्पेशल सॉन्ग जो उन्होंने गाया था एक लेजेंड के लिए एंड अब जब हम श्रीदेवी जी को याद करते हैं दिस सॉन्ग डेफिनेटली कम्स टू आवर माइंड नवराई माँ जी With his frequent collaborator Amit Trivedi, इसके लिरिक्स भी स्वानंद साहब ने लिखे हैं. Here in the Mirchi Top 20, I am Suren.
1: Mirchi Top 20. Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: हैंड।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं। आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर, सर आपको सी डाल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: गोविंदा नाम मेरा, एक एंटरटेनिंग फिल्म। बट अगर मैं पूछूं कि आपको क्या इस फिल्म का कोई डायलॉग याद है, तो शायद आपको याद ना आए। लेट मी एंटरटेन यू नाउ।
1: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पठान जैसी फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स थे दैट वर सीटी मार, आई मीन प्रॉपर पंच लाइंस। एंड आने वाले टाइम में कई लोग इस फिल्म के डायलॉग्स की मिमिक्री करेंगे, एंड दिस प्रूव्स द पॉपुलैरिटी ऑफ अ फिल्म। और अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मिर्ची टॉप 20 पर आई एम सुरेन। एंड 15 जून 2001 को दो फिल्में साथ रिलीज हुई। एक शायद आमिर खान के करियर की डिफाइनिंग फिल्म बनी, एंड इवन टुडे इट्स अ माइलस्टोन फिल्म इन इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फिल्म का नाम लगान। आई ना चेहरे पे मुस्कान। अब जो दूसरी फिल्म साथ रिलीज हुई थी, यू माइट थिंक कि लगान के सामने वो कहां चलने वाली थी, बट सच तो ये है कि ये दूसरी फिल्म उस टाइम पर थिएटर्स में लगान से ज्यादा चली थी, और उसका एक डायलॉग 22 साल बाद भी लोग भूले नहीं है।
2: अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद।
3: आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ, तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ।
0: That was Sunny Paji. I mean goosebumps. And a 22 साल बाद गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 is releasing. Sunny Deol is back. So is Amisha Patel and director Anil Sharma भी. And I just hope के वक्त उतना नहीं बदला है कि इस फिल्म को वो प्यार ना मिले जो 2001 में भरपूर मिला था. It releases on 11th August this year. It's going to be an Independence Day release. So इंतजार रहेगा. But next up is Current Lagare from Circus number 15 पे here on the Mirchi Top 20 with me Suren.
1: Number 15.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान की डेब्यू फिल्म कुत्ते से दैट वाज विशाल सर का ही गाना फिर ढंटना है और नंबर 14
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सो हियर्स द थिंग, मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड पठान में अपने कैमियो के बाद सलमान खान इज रेडी विद हिज ओन फुल फ्लेज्ड फिल्म जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। अब देखो, भाई की फिल्म का तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट एक भाई और है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। He's a creator on YouTube and उनका नाम है संदेश भाटिया। I love his interviews, मतलब मजा आ जाता है यार। And हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू किया अनुराग कश्यप को and मुझे नहीं पता था that अनुराग और सलमान भाई का एक कनेक्शन रह चुका है।
2: छाती के बाल नहीं हटाते?
3: पागल है क्या? मुझे तो एक फिल्म से निकाल दिया गया था, मैं हीरो को बोला बाल उगाने को।
2: अच्छा, एज अ डायरेक्टर निकाल दिया आप?
3: हाँ, लिखने के बाद।
2: केड़ी फिल्म है?
3: तेरे नाम।
4: What are you saying?
2: वैसे नहीं भी होगा तो चलता नहीं इतना, क्या आपको ऐसे होने की नहीं?
3: आगरा मथुरा की फिल्म थी, आगरा मथुरा।
2: अरे यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, सलमान की फिल्म है, तुम इतना डिटेलिंग में जाओगे? कैसी बात हो रही है?
3: मैं तेरे नाम बना रहा था।
2: अरे यार,
0: dude, I can't believe that this film was supposed to be directed by अनुराग कश्यप।

ओहो, कश्यप साहब का ट्रीटमेंट ही कुछ और होता। खैर, सलमान भाई की जो अगली फिल्म है किसी का भाई किसी की जान, उसका ब्रांड न्यू सॉन्ग डेब्यू करने वाला है बस थोड़ी देर में।

नहीं यो लगदा, बट उससे पहले अनुराग की फिल्म का गाना लगदा। दिस इज वुमन देसी फ्रॉम ऑल मोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत हियर ऑन नंबर 13 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन। नंबर 13।

0: आ गया भाई का गाना आ गया। डेब्यू का नंबर 12 दैट वाज नहीं हो लगता फ्रॉम किसी का भाई किसी की जान।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: यार एक बात तो है, भाई इज अ फीलिंग, इज एन इमोशन। उनकी फिल्म का कोई भी हिस्सा जब आता है, फैंस इतनी तादाद में प्यार दिखाते हैं दैट इट्स अनबिलीवेबल। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड सलमान खान, एज वी ऑल नो, इज नोन टू कीप हिज फ्रेंड्स क्लोज। कुछ भी हो जाए, भाई सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो उनके करीबी दोस्त हैं उन्हें वो हमेशा काम देते रहते हैं। Now take the song for example. इसे बनाया है हिमेश रेशमिया ने, who owes his career to सलमान खान, और इसे गाया है पलक मुछाल ने, जो खुद सलमान खान की फेवरेट सिंगर्स में से हैं। लेकिन जो मेल सिंगर हैं, वो जिन्होंने शायद भाई को उनके करियर का सबसे आइकॉनिक गाना गा के दिया था। I mean for me, this is the ultimate सलमान खान song.

कमाल खान, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद दैट फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान, क्योंकि उनपे तो भाई ने खुद केस कर रखा है। खैर, नहीं हो लगता ऊपर जाएगा, और ये मेरी और भाई की गारंटी है। नेक्स्ट अप दो, आई हैव गाना नंबर 11 फ्रॉम शहजादा, मेरे सवाल का शाश्वत और शालमली की आवाज में। यू आर इन द मिर्ची टॉप 20, आई एम सुरेन। नंबर 11।

सिंह साहब तुसी ग्रेट हो। 2010 के दशक में अरिजीत दुख भरे रोमांटिक गानों की आवाज था, और इस दशक में इट फील्स लाइक ही वांट्स टू सिंग द न्यू डांसिया नंबर्स। वे टू गो ब्रो। शहजादा का गाना छेड़खानिया इज स्लिपिंग एंड इस हफ्ते नंबर 9 पे है ऑन द मिर्ची टॉप 20। एंड विद दैट नंबर 8 पे वी हैव अ ब्रांड न्यू सॉन्ग एंड इट हैपेंस टू बी फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। ना पूरी फिल्म की वाइब एक अर्बन कूल पेप्पी रोम कॉम वाली है, तो जाहिर है कि म्यूजिक भी इस वाइब को मिरर करेगा। एंड जो नया गाना है उसकी लाइन सुन के ही आपको समझ आ जाएगा कि गाना कैसा होगा। एंड लाइन है, प्यार होता कई बार है। There you have it. And Pritam Da ने ये गाना गवाया है अरिजीत से। Now, इस गाने में you got the dance, the Ranbir dance mind you, वो energy, अतरंगी lyrics and somehow ये अरिजीत के एक और गाने की मुझे बहुत याद दिलाता है। I mean it's in the same zone and space। गाना कौन सा था?

भाई एक बात है, ऋतिक और शाहिद के बाद अगर किसी के डांस मूव्स मुझे बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगते हैं एंड नॉट लाइक सम रोबोटिक कोरियोग्राफ सीक्वेंस, तो वो है रणबीर कपूर। हियर इज प्यार होता होता होता कई बार है, डांसिंग अवे टू डेब्यूइंग हियर नंबर 8 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन। नंबर 8।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया, इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माय नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड ये जो दो दोस्त हैं मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखां दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
1: किससे बात कर रहे
2: हैं? मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें
2: नहीं,
1: कर
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है।
2: असली
1: औकात
2: नहीं
1: कर रहे हैं।
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: वो तो कोई बपौती है।
2: नहीं नहीं, बात नहीं तो तमीज सीखिए। नहीं तमीज,
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे। आपका मुर्गा बन गया।
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू छोटी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। So love also decided कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा and तब तू झूठी मैं मक्कार happened। मिर्ची टॉप 20 पे I'm Suren and the one thing that is really amazing is the new pairing of the two Kapoors, Ranbir and Shraddha। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। And the best part, they both actually look good together। But दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया? जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is love's genius that she casted both of us together. So thank you, love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल। एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना
2: हिट

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए।
1: सुरेन के साथ Only on Mirchi, It's hot।
0: प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
2: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुलेट 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग, एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन, बी इट सोनू टीटू का म्यूजिक, बी इट भूल भुलैया का म्यूजिक, और बी इट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मींस ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे। राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। टॉक्स अबाउट योर टेस्ट मोर देन माइन, चेक इट आउट, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20। आई एम सुरेन,
1: नंबर 1।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

वक कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

मिट्टी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं।
2: नहीं तो आप बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग।
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ।
1: हाँ,
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं, हाँ,
1: आप किस से बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं,
1: रहे हैं।
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: नहीं, बात
2: नहीं, तमीज सीखिए।
1: नहीं, तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है,
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआ ले लो फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana.
1: Rambala.
2: Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
3: स्पीकिंग,
4: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
3: हाँ, sure.
4: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी.
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल, कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे.
4: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
3: आप किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
3: हेलो,
4: हाँ बोलिए.
3: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
3: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं. नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं.
4: नहीं, नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
3: तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
4: नहीं, बात नहीं, तो तमीज सीख ले.
3: नहीं, तमीज नहीं, नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है.
4: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: Mirci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virpa la murga.
1: Mirci, murga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया है, मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर। सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
3: नहीं तो आपने बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटा।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची का।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: इंडी टॉप 10
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: ना किसी हीरो के बारे में ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक, वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स, उन्हीं की कंपोजिशन। दिस सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, साडी सोनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन ऑन नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 10
4: हो चुप कर लंघ जावे, कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: लाल लाल कलर की बांगड़ी, बांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पे जाओ, मेरा handle is @RJKanika। कोई गाना suggest करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके hit me up। I truly believe that गाने share करने से प्यार बढ़ता है। Countdown का जो अगले वाला गाना है, it's one of those collabs जो I'm quite surprised इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया। And now जब आप ये गाना सुन चुके हैं, everything about this collaboration just makes sense। I'm talking about Jasleen Royal and Badshah, उनका नया नवेला गाना इनाम। Countdown का अगले वाला गाना है, but before we play the song, I have to talk about Jasleen Royal। वो इस music industry की ऐसी artist हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से तो she's been giving us back to back viral hits like हीरिये। ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाए है उनमें उसके साथ। Then also साहिबा with Stebin। दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे, बट यू नो जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी। आई हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई हैव जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई। आई हेट टू से इट बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस। जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है। I love the composer that she is. I'm sure इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए हैं।

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई हैं आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाय जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेरशाह का रांझा जो बीप्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

0: Mirchi.
1: Escabala, buscabala, sacabala. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको. अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ
2: किससे बात कर रहे
3: हैं? मैं, वो मेरी वाइफ है यही. हाँ बोलिए.
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं. बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है.
3: असली
2: औकात
3: नहीं
2: कर रहे
3: हैं. नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं, बात नहीं, तमीज सीखिए.
2: नहीं,
3: तमीज
2: नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Okay.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
5: Indie Top 10
4: Kanika ke saath on Mirchi
5: number 7.

0: आशिकी की आवाज गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 7 पर हमने आशिकिंग की आवाज में किनिया सोनी सुना, उससे पहले जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम, जो कि एक री एंट्री था ऑन गाना नंबर 8। जसलीन इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए फिल्म के गाने भी कंपोज करे और अपने नॉन फिल्म गाने भी उतने ही बड़े बना दिए। And it's not at all an easy feat. कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बदला।
0: गली बॉय के साउंडट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहां हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरे के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, कॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। दिस सॉन्ग वॉज अ फिनोमेना, एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। एंड जस्ट द फैक्ट दैट उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के आई ऑलवेज फील सो इमोशनल फॉर एवरी आर्टिस्ट, कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं, इसीलिए हीरे मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरे मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में, गाने का नाम है हीरिये। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कोर्स। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बारे गाने की बारी। आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। तो कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। चलो काउंटडाउन पर अब आगे बढ़ने से पहले वक्त की सुई थोड़ी पीछे घुमाते हैं। आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बस मेंटली इमेजिन करो, आंखें रोड पर। छोटा सा कमरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और वो क्लिक वाली आवाज जब आपने कैसेट अंदर डाली और आपका फेवरेट गाना ऑन। कोई स्किप बटन नहीं है बॉस, गाना सुनना ही है क्योंकि गाना हमको बहुत पसंद है। दीज आर द सॉन्ग्स जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के वही आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं जिनको सुन के हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: kabhi.
1: And the song we're going to feature this week is
2: Aankhon mein tera hi chehra dhadkan mein teri hi yaadein karti hai deewana.
1: Gaane ka naam hai Aankhon mein tera hi chehra by the band Aryan. Saal 1999 mein ye gaana release hua. Awaaz Jay Walia ki hai. इस गाने को सुन के मुझे वही जमाना याद आ जाता है जब प्यार बहुत सिंपल था. कोई लफड़ा ही नहीं था कि सीन पे छोड़ दिया, ब्लू टिक नहीं आया, ऑनलाइन है या नहीं है. कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का, तो आप बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने दिमाग में. जो स्टेजेस ऑफ लव होते हैं ना, उसमें इन्फैचुएशन सबसे प्यारा होता है. जब पेट में वो प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, जब दिमाग में हम सिर्फ उनसे मिलने के सपने देख रहे हैं या उनसे जब मिले थे उसके बारे में सोच रहे हैं. एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली कैप्चर्स दैट कि आंखों में तेरा ही चेहरा, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ब्रो. दिस इज द काइंड ऑफ लव जो हर लड़की चाहती है कि किसी लड़के को उससे हो जाए. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इट्स टाइम टू फील दैट ओल्ड स्कूल लव. जय वालिया की आवाज में आर्यन द बैंड का गाना दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक. This week, you're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

यार व्हाट अ सॉन्ग दिस इज, जय वालिया की आवाज, दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा. यू नो जब दिल कच्चा था और प्यार सच्चा था, ये उसी जमाने का गाना है. एट आरजे करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसा 90s 2000s का गाना जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ क्विकली एक इंडी पॉप क्विज. आंखों में तेरा ही चेहरा में एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म एक्टर हैं, बट उनकी पहली मूवी से पहले ही वो इस गाने में फीचर हो चुके हैं. जल्दी जल्दी बताओ दुबला सा पतला सा प्यारा सा लड़का कौन है जो आंखों में तेरा ही चेहरा में फीचर हुआ था. एट आरजे कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर आर्टिस्ट के दिल की कहानी. गाने का नाम है अर्ज किया है. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग हैज बीन ऑन अ काउंटडाउन फॉर 25 वीक्स एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू. अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Hello, hello. Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the Ghana Indie Top 10. Only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram पर मेरा handle is @RJKanika. Now गाना number 10 से गाना number 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. Before we move on to the top 2 songs of the week, एक quick recap करते हैं right from the top. गाना number 10 पर था हर्ष नुसी का साड़ी सुन.
4: अखियां ना अखियां मिलाते सही, साड़ी सुने अपनी जनाते सही.
3: Then संजू राठौड़ का bangles this week on गाना number 9. एक री एंट्री हुई है जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम ऑन गाना नंबर 8. एश किंग का किनिया सोनी दिस वीक ऑन गाना नंबर 7. उसके बाद गाना नंबर 6 पर आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का कोक स्टूडियो सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी. Loving this song, Anish Sarkar, Hriday Ka Gaana, Udi Udi on Gaana number 5. Then Diljit Dosanjh ka Dealer on Gaana number 4. Anoop Jain ka Arz Kiya Hai, Still Going Strong, this week on Gaana number
5: 3.
3: The top 2 songs of the week, एक quick shuffle हुआ है, एक गाना ऊपर, एक गाना नीचे. मिटर और की आवाज, उन्हीं की composition, along with स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is this week on गाना number 2. And the numero uno song of the week. एक बार फिर से एक position ऊपर jump करके बंजारे का गाना बैरन, this हरियाणवी sensation of a song, 16 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. Baron is this week on Gaana number 1. Ye dono gaane back to back, Shisha on number 2 and Baron on number 1, only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं। इसी उम्मीद के साथ लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉप 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आए। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा VFX ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा स्पाई यूनिवर्स अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yeah,
3: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: हैंड।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं। आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ, हु आर यू?
3: सर मनीष।
2: हु आर यू?
3: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर, सर आपको सी डाल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची में मैंने मुर्गा बनाया, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 17.

0: कभी कभी कुछ फिल्में रिलीज नहीं होती,
1: हमें मिल जाती हैं, जैसे ये फिल्म मैं वापस आऊंगा।
0: जब रिलीज हुई थी किसी ने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, फिर किसी ने देखी, किसी ने किसी और को बोल दिया यार ये फिल्म पक्का देखना, और बस वहीं से उस फिल्म की असली जर्नी शुरू हुई। इस दुनिया का सबसे पोटेंट और सबसे कामयाब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वर्ड ऑफ माउथ। ये इस दुनिया की सबसे ईमानदार पब्लिसिटी होती है, क्योंकि इसमें पोस्टर नहीं बोलता, इंसान बोलता है। और पता है, इस फिल्म पर पूरी छाप इम्तियाज अली की ही है। उनकी फिल्में कभी मुझे थिएटर में समझ नहीं आई, घर आने के बाद समझ आई। कभी किसी तन्हा रात में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत के बाद, कभी जब जिंदगी ने वो सवाल पूछे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, तब लगा इम्तियाज फिल्म नहीं बनाते, वो एहसास छोड़ जाते हैं।
2: आजकल के जमाने के आप लोग जो यंग लोग हो ना, आप लोग और भी ज्यादा किसी चीज को ढूंढ रहे हो। कहते हैं कि आपके हाथ में डिवाइस है, आप बहुत आसानी से रिलेशनशिप में जाते हो, ब्रेकअप करते हो, आगे बढ़ते हो, ये सब करते हो, बहुत आसान है आपके लिए। बट इस आसानी की वजह से ना एक्चुअली ज्यादा मुश्किल हो गया है, ज्यादा लोनली हो गए आप लोग, और जो लोनली होता है वो ज्यादा ढूंढता है। विच इज वाई हमेशा मैंने देखा है कि जो यंग ऑडियंस होती है इस फिल्म में, वो ज्यादा इमोशनली देखती है, ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है।
0: शायद इसलिए कुछ फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं और कुछ धीरे धीरे लोगों के अंदर पहुंच जाती हैं। और अगर आप किसी फिल्म के बारे में बार बार अलग अलग लोगों से एक ही बात सुनने लगे तो समझ लीजिए पिक्चर हिट नहीं हुई है, पिक्चर लोगों तक पहुंच गई है। नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

शायद उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना बनी हो जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी कहानियां जरा देखिए, धुरंधर 2, बॉर्डर 2, वेलकम टू द जंगल, धमाल 4, ये सब फ्रेंचाइज फिल्म्स हैं। वेलकम टू द जंगल को लाउड बोला गया था, धमाल 4 को आउटडेटेड कहा गया था, क्रिटिक्स खुश नहीं थे, सोशल मीडिया भी इम्प्रेस नहीं था, लेकिन जब टिकट्स बिकना शुरू हुई तो लोग थिएटर्स पहुंच गए, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। प्रोड्यूसर्स इमोशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्रोबेबिलिटी में करते हैं। एक नई फिल्म को पहचान देने में करोड़ों लग जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज अपनी पहचान लेकर आती है। और शायद सबसे बड़ी आयरनी ये है, हम सीक्वल देखने जाते हैं और घर आकर ट्वीट करते हैं, बॉलीवुड शुड स्टॉप मेकिंग सीक्वल्स। यार हर सीक्वल अच्छा नहीं होता और हर फ्रेंचाइज चलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक ऑडियंस टिकट खरीद रही है तब तक पार्ट 5 भी बनेगा, पार्ट 6 भी बनेगा और पार्ट 7 भी बनेगा। और इस वक्त उसी सीक्वल की दुनिया से नंबर 13 पर है साड़ी, धमाल 4 से नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर
1: 12। कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

You know, sometimes एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल होना हो मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997। एक आवाज आई, इसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तनहा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।

एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइडस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई

0: हैं कि इसमें सैयारा की झलक है, हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं, और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त बेजुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर।
1: नंबर 9।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 7।

0: समटाइम्स एक फिल्म अच्छी होती है, समटाइम्स एक एक्टर कमाल का होता है, लेकिन समटाइम्स किसी सीन को हमारे दिल में अगर कोई परमानेंट बनाता है तो वो होता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड रहमान डकैत को देखने के लिए हम सब बेचैन थे, और इसलिए इस हफ्ते मैंने देखी इक्का। सनी पाजी बैक एज अ लॉयर एंड अक्षय खन्ना बैक एज रहमान डकैत। इट वॉज वियर्ड वॉचिंग हिम प्ले समथिंग सो सिमिलर। लेकिन एक और बात है जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी, कुछ सीन्स सच में बहुत अच्छे थे लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ने उन्हें वो एहसास ही नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तब मुझे समझ आया बैकग्राउंड्स को सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, वो इमोशंस का डायरेक्टर होता है। अगर यकीन नहीं आता तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये रहना है तेरे दिल में का वो आइकॉनिक सीन है जहां माधवन दिया मिर्जा से अपने प्यार का इजहार करते हैं समंदर के सामने। पहले मैं आपको वही डायलॉग सुनाऊंगा लेकिन टोटली गलत बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा, मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: सुनने में अजीब लगा ना, डायलॉग वही था, एक्टर्स भी वही थे, हर लव्स भी वही था, बस म्यूजिक गलत था। अब बिल्कुल वही सीन, बिल्कुल वही डायलॉग, लेकिन उस बैकग्राउंड स्कोर के साथ जिसने उस मोमेंट को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा, मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: नाउ यू फील इट राइट, यू फील इट इन योर हार्ट। पर देखा आपने, सीन नहीं बदला, एहसास बदल गया। और शायद इसलिए सिनेमा पहले आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक उसी फिल्म से है, इसका बैकग्राउंड स्कोर आज भी मोहब्बत की डेफिनेशन लगता है। स्पेशल

0: चिकन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलो.
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ. आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा आपको?
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का. एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23
3: एक सेकंड सर. सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए.
2: हाँ जी हाँ जी.
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं.
2: बिल आया था 2200 रूपए का.
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए. ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा.
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ. नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर. इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है.
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर. 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की. सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती.
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले. आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है. अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर. जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप.
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर. आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर. आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर. आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है. देखिए मैं यही से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं.
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई.
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ. 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार. आप फोन काट देते हैं बार बार यार.
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार. आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में.
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार.
3: तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार. फिर मीटर तेज भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए. आपका मीटर तेज सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है. मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे. और
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: के साथ only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: हर बार जब कोई गाना सुपरहिट होता है हम मान लेते हैं कि उस गाने के सिंगर की जिंदगी भी बदल गई होगी, लेकिन बॉलीवुड का हिसाब किताब इतना सीधा नहीं होता। ना गुरु रंधावा का कहर फ्रॉम धमाल 4 इस हफ्ते नंबर 5 पर है और नंबर 4 पर है ये नंबर 4। पुराने गाने का नया वर्जन एंड समथिंग सिमिलर ऑन नंबर 3 एज वेल इज फ्रॉम कॉकटेल 2 एंड ये दोनों कॉकटेल फिल्म्स का सबसे लव्ड गाना है। एक ऐसा गाना जिसने सिर्फ चार्ट्स ही नहीं जीते दिल भी जीते। तुम ही हो बंधु कॉकटेल 2 का वो गाना जिसने कविता सेठ की आवाज को हर घर तक पहुंचाया। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा गाना देने के बाद भी प्रीतम दा और कविता जी की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ काम ही नहीं किया। एंड मे बी दैट्स व्हाई हॉलीवुड इतना अनप्रिडिक्टेबल है। कभी ये गाना आपको हमेशा के लिए एवरग्रीन बना देता है और कभी वही गाना आपका सबसे बड़ा तोहफा भी बन जाता है और आखिरी भी। सुनिए खुद कविता सेठ से जब वो बता रही हैं कि तुम ही वो बंधु गाते वक्त उनके दिल में क्या चल रहा था।
1: तो वो गाना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरे लिए बहुत हाई स्केल था, मेरी बहुत ही मिड लो टिम्बर और लो मिड टिम्बर वॉइस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे गाऊंगी। तो मैं जब जा भी रही थी रास्ते में थी तो मैं दादा को फोन करके बोली थी, मैंने कहा दादा मैं कैसे गाऊंगी, बहुत हाई है मेरे लिए, बहुत हाई रेंज में। बोले तुम आओ बस स्टूडियो सब समा कर लोगी तो हो जाएगा, सब आ जाओ बस तुम, बहुत ही बिंदास तरीके से। बहुत डर लग रहा था कि उस दिन कैसे गाऊंगी, लेकिन काफी सारे टेक्स देने पड़े क्योंकि वो एक एक लाइन करके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जब रिकॉर्ड हो गया मैंने घर आके बच्चों को बताया ही नहीं, तो जब उसके प्रोमोज आना शुरू हुए उसमें मेरा और नीरज श्रीधर का नाम लिख करके आ रहा था तुम ही बंधु, तो दोनों बोल रहे ये आप कब गा के आए, अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है।
0: देखो अच्छे गाने कभी रिटायर नहीं होते, हर जनरेशन उन्हें दोबारा अपना ही लेता है और इसीलिए इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 एंड कॉकटेल 1 का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर संग बाय नीरज श्रीधर एंड द लवली कविता सेठ दिस इज तुम ही वो बंधु सखा तुम ही नंबर 3।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 2.

नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। कैन यू बिलीव इट That war in 2019 was his last big blockbuster, and maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। और टैलेंट दोनों के पास है, दे हैव सम मेजर एक्टिंग चॉप्स, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची टॉप 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची डॉट 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना

0: मिर्ची मिर्ची मिर्ची।
1: ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। Hello and welcome to Club Mirchi World Cup Final Weekend. And this is your host Mirchi Oyontika. With me is DJ Richard and World Cup Final Weekend Special finally begins.

बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। Legends don't ask for attention, they own it. Like we own the attention at Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, or Yontika. Welcome guys.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
3: स्पीकिंग.
4: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
3: हाँ, sure.
4: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
3: जी.
4: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे.
4: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ,
3: आप किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
3: हेलो.
4: हाँ बोलिए.
3: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
3: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
4: हाँ?
3: नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं.
4: नहीं, नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली बात कर रहे हैं.
4: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
3: तो कोई बपौती है क्या? कैसे बात कर रहे हैं?
4: बात नहीं, तो तमीज सीख ले. नहीं, तमीज
3: नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है.
4: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया.
3: Oh my.
4: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
2: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

मिर्ची और योंतिका, सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन, लमीन यमाल। एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो,

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूटआउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर।

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका वेटिंग फॉर द नाइट।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे मिर्ची।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूट आउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस टुमारो मिडनाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।